0: सिलेंडर वाला काम कहां
1: बाबू
2: बाबू एगो बात करके चले
0: की काम रहे
2: अपना गांव के उरादा है ओकरा से हम प्यार करे छे ओकरे से हम शादी करे छे
0: केकर बेटी
2: शायद ओकर बाबू के नाम विनोद
0: ए ओ विनोद बा तू ई बात पहले केले नहीं कहले ठीक है जो हम बात कर संजीत अरे संजीत
3: हां काका
0: जो तो विनोदवा के आ विनोदवा के बेटी के मंगरवा के कही तो बुला के लते हां
4: काका सब समय तुम के भले में तो नहीं हो तो
5: भैंसी देखती बार हम भर दिन से है काम रे सुझाए भर दिन घर रे सब कोने रे
6: मालिक बोला
5: चल तो जल्दी चल तो

0: जुत्ता ला जुत्ता ला जुत्ता
1: तोहर जुत्तो के बराबर तोहर औकात हो तू केना सोच लेली तोहर बेटी आई घर के मालकिनी बनते लाज नहीं लगे हो
2: मालिक की बाज रहल छी अपने
1: हम ठीक कह रहल छी सुन तोरा औकात ना हो तोरा बेटी के शादी करे के ले 2 लाख रुपया जो अपना बेटी के दोसर जगह शादी कर
3: मालिक पैसा के गर्मी नहीं देखाओ हम गरीब छी ने हमरो अपना पाई में ताकत है कमा के अपना बेटी के ब्याह करे के घर अपन पैसा अपना बेटा के इसे संस्कार करो चल बेटी एकरो से निमन घर में हम तोरा ब्याह करा दे चल

सुन रहल छी ना, सुन एक बात कहै छी। देख मेरा नसीब तकदीर रोने लगी, जज्बात देखकर दिल की जागीर रोने लगी, इश्क में दीवाने की हालत कुछ ऐसी हुई, सूरत को देखकर खुद तस्वीर रोने लगी।

0: ये सहरसा वाली हम चाय पैक तो पिया दू
1: चाय चाय चाय खाली करते रहे छी आ भर गाम घूम आवे छी अंगना में आपका चाय चाय करा लगे छी
0: नहीं है पहले तो हां तो हम गुलाब लागे छलो अब खराब हो गेलो
1: हां

कुछ समय पहले मुझे पहली बार मौका मिला बक्सर जाने का। मंत्री जी ने बुलाया था और मैं बहुत उत्सुक थी, क्योंकि जब पढ़ा मैंने कि बक्सर में भगवान राम का वो पहला कांड था

0: दीपक।
1: हाँ भैया, गृह मंत्रालय जी बड़ी रे।
0: गृह मंत्रालय मतलब
1: तोहर भौजी।
0: दीपक एगो काम कर भाई।
2: बोला
0: बाबूजी लगे जो
2: नहीं भैया
0: जाई बा
2: नहीं
1: चल चल हां
3: हमार हाथ छोड़ा, ये हमार सहेली के घर बा।
1: तो हम तोहरा सहेली खाते आइल बनी और तोहरा अलावा हम यहाँ केहू के पहचानत नहीं खी और ना ही जानत आनी। लाई गिफ्ट अपना सहेली तक पहुँचा दा।
0: पहुँचा देबू ना लो।
3: पागल
1: आशिक
3: बदतमीज।
1: सुना जब बदतमीजी के सर्टिफिकेट दिए देहलू तो लागत आई सर के किस गाल पले के आही के
3: चैलेंज।
1: का हो भाई

0: अरे कौन ना यहाँ सकार है
1: अरे कहन रे
0: मैं गोहरा उगरा हो एको मेहरा रुपया पे गोहरा
1: अरे सतीश बाबू जी
2: ए का चिल्लात रहो का गोदत रहो
0: अरे भौजा गोदना गोदतानी
2: अच्छा अच्छा गोदना गोदत रहो
0: हां कई प्रकार का गोदीला
2: हां ना जैसन जैसन कहल जाला वैसन वैसन बनावे
0: एकदम ना गोदी दे
2: कैसे मानी
0: सुना हमार बात
2: अच्छा

0: ए माला की
1: बोला
0: अपने हाथ पर दिल बनवा ला बिल को अंगूठी।
1: अच्छा ठीक अब
0: चल गोदी दे रे।
2: अया यो ढाड कमर दुखे रही म त हैरान भइसके भने।
3: यति सानो समस्यामा पनि चिन्ता लिएर बस्नुपर्छ त भने ल यो सन्देश सुन्नुहोस् त।
4: कोरियन प्रशिक्षकबाट प्रत्यक्ष रूपमा तालिम प्राप्त विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर उपचार सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ थेरापिस्ट सुशील अर्यालबाट उपचार गराई ढुक्क हुनुहोस्।
3: आयुर्वेदिक मसाज, कोरियन मसाज तथा अकुप्रेसर विधिद्वारा कम्मर तथा मेरुदण्डको दुखाइ, थकान महसुस भइरहने लगायतका समस्याको सफल उपचार।
4: उपचारका लागि सम्पर्क वरिष्ठ थेरापिस्ट दृष्टिविहीन सुशील अर्याल, ओजस आयुर्वेदिक हस्पिटल, सामाखुशी चोकबाट रानीबारी जाँदा 10 घर पर। फोन 01-4963-161, 98-49-39-1232, 98-49-39-1232।